0: नमस्ते, मैं हूँ गौरव फ्रॉम द बैंड कोमारोसी और आप सुन रहे हैं प्रॉगकोर रेडियो, द ओनली ट्रू प्रॉग रॉक एंड इंडी स्टेशन इन मॉन्ट्रियल।
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.